आपने आप मेरा पीछा कर रहे हैं पहले दिन रुबिन चाय की बंसी बजाई है क्या जो अभी तक मेरी ड्यूटी टाइम है